0: ఉగాది పండుగ మనందరము జరుపుకుంటాము.
1: యుగ యుగాది కళెదరు యుగాది మరళి బరుతుదే, ಹೊಸ ವರುಷದಿ ಹೊಸ ಹರುಷವು ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕವಿ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸಿರಿಗಂಧದ ಬೀಡು, ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಬ್ಬ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬದಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೂತನ ವರ್ಷ ಸಂತಸ ಶಾಂತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪರೂಪದ ಪದ್ಧತಿ ಏನೆಂದರೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಹಂಚಿಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೀಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಗ್ರಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುಗಾದಿ ಪಚ್ಚಡಿ ಆಫ್ ತೆಲುಗು ಪೀಪಲ್. ಬೇವು ಕಹಿಯ ಪ್ರತೀಕ, ಬೆಲ್ಲ ಸಿಹಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಿಹಿ ಕಹಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಮಿಶ್ರಣ. ಒಂದು ಹೊಡೆ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆ ತೆಗಳಿಕೆ. ಒಂದು ಹೊಡೆ ಪ್ರೇಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆ ದ್ವೇಷ. ಒಂದು ಹೊಡೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಪ್ರತೀಕ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ಯುಗಾದಿ ಸಂದೇಶ.
2: ಆಜ್ ಕಾ ಯೇ ಶುಭ ದಿನ ಬಡಾ ಆನಂದದಾಯಿ ಹೈ, ಸಚ್ ಕಹತಾ ಹೂಂ, ಕ್ಯೂಕಿ ಹಮಾರೆ ಸಮಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿನಾಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಮಾರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ, ಜಿನ್ಕಿ ಸಮಕ್ಷ ಮೇ ಹಮ್ ಅಪ್ನಾ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ, ನೂತನ ವರ್ಷ ಕಿ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ನೂತನ ವರ್ಷ ಕಾ ಆಗಮನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಔರ್ ಸಿಂಧ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಮೇ ಏಕ್ ಮುಖ್ಯ ಔರ್ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ರಖತಾ ಹೈ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇ ಇಸೆ ಗುಡಿ ಪಡವಾ ಕೆ ನಾಮ ಸೆ ಜಾನತೆ ಹೈ ಔರ್ ಆಜ್ ಕಾ ಯೇ ದಿನ ಸಿಂಧಿಯೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಚೇಟಿ ಚಾಂದ್ ಕೆ ನಾಮ ಸೆ ಜಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. गुड़ी पड़वा में गुड़ी का पूजन होता है. गुड़ी अर्थात कलश को बांस की लकड़ी पर लटकाकर सूर्य का नमन किया जाता है और उसके पश्चात बड़े चाव और प्यार से गुड़ी का प्रसाद सेवन किया जाता है, जिसमें नीम के पत्ते, गुड़ और चना, जैसे हमारी युगादि की पचड़ी होती है, उसी प्रकार सेवन की जाती है. इसके पश्चात विजय का घोष किया जाता है. विजय घोष का एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश है और वह यह है कि सत्य का असत्य पर विजय, अच्छाई का बुराई पर जीत. कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया था और परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान पितामह ब्रह्म ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी. सिंधियों में यह पर्व अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उनके इष्ट देव झूलेलाल जी का जन्मदिन आज ही का दिन मनाया जाता है और जल का पूजन होता है इसी दिन. अतः नववर्ष हमारे जीवन में एक नया संदेश लेकर आती है, एक नई उमंग लेकर आती है, एक नई आनंद लेकर आती है. पर सच कहता हूं, हमें भगवान के प्रति सदैव आभारी रहना चाहिए कि हम हर साल नया वर्ष, चाहे महाराष्ट्र का हो, सिंध का हो, दूसरे विदेशों का हो, उगादी हो या कन्नड़ा का हो, हम स्वयं साक्षात पर ब्रह्म के सामने मनाते हैं. भगवान, हृदय पुलकित हो उठता है जब यह ख्याल आता है कि हम कितने खुश नसीब हैं, कितने भाग्यवान हैं कि हमें आपका सन्निधि प्राप्त हुआ. सच कहते हैं भगवान, सदैव अपना छत्र छाया हम पर बनाए रखना, सिर पे रख दो हाथ कि जीवन आनंद से भर जाए. स्वामी, अपना आशीर्वाद सदैव हमारे जीवन में बनाए रखना और हमारे जीवन के नूतन वर्ष को अपनी यादों, अपने प्यार, अपने प्रेम से भर देना स्वामी, कि हर पल, हर क्षण, हर नया वर्ष में सदैव आपका याद रहे, सदैव आपका अभिनंदन रहे, सदैव आपका प्रेम हृदय में गूंजता रहे. बस यही विनती हम बच्चे आपसे करते हैं, सदैव हमारे सिर पर अपना हाथ बनाए रखना.
0: ఆకు రాల్చిన చెట్లు పచ్చగా తొడిగి పచ్చగా వెలుగుతూ వచ్చి వేపపూల ఘుమఘుమలు, మత్త కోకిల గుహుగుహురావలు, తొలి పండుగ సందడులు, భువిజులు, భగవద్భక్తులు సత్యసంధులై సంతోషతరంగులై సంతుష్టాంతరంగులై దయాగుణ గణోదారుండ దగ్గరలో నలినాక్ష సమక్షంలో శ్రీ సత్యసాయి సన్నిధిలో ఈ నవయుగాగమనానికి మనందరం స్వాగతం పలకడం మనందరి పురాకృత సుకృత విశేషం.

0: वंदना होती निश्चित वन में, शब्दों से करता श्रृंगार। परंतु सुना है देवालय मेरा, अंतर में गहरा अंधकार। भोर का शंख बजा दूं मैं, तुम प्रेम सहित लो पधार। प्रभु नयन मिला लो एक बार, प्रभु नयन मिला लो एक बार। अनंत तृष्णा मिटा नहीं सकता, स्वयं को स्वयं से हटा नहीं सकता। बनकर दीपक तेरे द्वार पर, जल लेता मैं अनंत काल। प्रभु नयन मिला लो एक बार। नयन की तृष्णा है ये भीषण, जगत की मदिरा से तृप्त नहीं होती। नयन की तृष्णा है ये भीषण, जगत की मदिरा से तृप्त नहीं होती। प्रेम की अगन है ये पावन, आंसू के धार से बुझ नहीं सकती। आंसू के धार से बुझ नहीं सकती।
1: इस पावन बेला में हम सभी श्रद्धालु सुंदर साई के अनुपम रूप के आनंद सागर में विभोर होने के लिए एकत्रित हुए हैं। संसार का कोई भी मिथ्या सुख इस आनंद के सामने फीकी पड़ जाती है, जब भक्त के नयन भगवान के दर्शन करते हुए अपने ही आंसुओं में तृप्त हो जाती है।
0: स्वामी ने स्वयं कहा है कि इस घोर कलिकाल में नाम स्मरण से बढ़कर सरल और सुलभ उपाय कुछ भी नहीं है। नाम और रूप, रहस्य और रस, परम गोप्य परम दिव्य रहस्यमय नाम जब दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है, तो वह भुवन सुंदर विश्व बंदित मनभावन रूप भी अपने आप प्रभासित होने लगती है। कितना सरल है ये नाम स्मरण। और आज हमारे अहोभाग्य है मित्र कि वही विश्व वंदित भुवन मोहन रूप हमारे सामने विराजमान है, और उन्हीं रूप का आस्वादन करते हुए, उसी नाम को लेते हुए हम ये नववर्ष का आरंभ कर रहे हैं।
1: प्रभु, हम आपके चरणों में वही शब्द पुष्प अर्पण कर रहे हैं जो कि सदियों पूर्व भक्त साम्राज्ञी मीराबाई ने आपके प्रेम में पुष्पित करके बोला था, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल।

तंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को धारी मन आस रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास सांत सहज सूख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पद पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतर सभ्यता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा अन्न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया शाल त्रिन की अगन में की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल रहाओ छोड़ सियान बहु चितराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का एहो उत्तम फल वेद बखयान करत साधु जान भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय माल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवै परमेसर कोटफला दर्शन गुर डीठे रहाओ गुण गावत अच्युत अविनाशी काम क्रोध बिनसे मद टीठे अस्त्र पय साच रंग राते जन मरण बाहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक ना बेहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहजानंद होवै दिन राती अंकर भलो हमारा रहाओ गुरपूरा पेट्यो वड भागी जा को अंत ना पारा वारा कर गह काढ लियो जन अपना बिकसागर संसारा जन्म मरण काटे गुरबचनी बहु न संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन सह सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल बिख नास सिमरत पावन तन मन सुख देख सरू पूर्ण पई आसा दर्शन पेट उत्तरी भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक सरन गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय और तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम्या पारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहुर कश ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मझारे टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई उर्ज कनक कामनी के रस नह कीर्त प्रभ गाई रहाओ जग झूठे कहो साच जान कै ता स्यों रुच उपजाई दीन बंद सिमर्यो नहीं कबहू होत जो संग सहाई
मगन रहो माया मैं निसजन छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर काय रे बकबाद लायो जिन हर पायो तने छपायो रहाओ पंडित होए कै बेद बखाना मूर्ख नाम देवरा मैं जाना कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही पतत पवित भय राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन कौ परत गया आई एकादशी वर्त रह काहे कौ तीर्थ जाई पंडित नाम देव।

दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निरास जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरन आवन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपै हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांधया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटम कर लड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरै जैसो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलान जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासो चितवीया हां टठिया कम ना आवनी विचों सखणिया हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमल रुख शरीर मैं जन देख भुलन से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हों चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगे आईया अवर स्याण पकित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सूही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सूही महला पहला जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी इतना मिलिया गुर आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवे दिखिया चल ऐ सतगुर पाए पवै ना पीखिया। जा को महला हजूर दूजे नवै किस दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे उ सारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जोत स्पाव सी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी ये द्वारे तोए हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगै पाए सी। जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाव आप वरताए सी।
ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ।

जोग ना खिंथा जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुंडाया जोग ना सिंघी वाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है गली जोग ना होई एक दृष्ट कर संसर जाने जोगी कहिए सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसाणी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना दे संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेट ता सहसा टूट तावत वर्ज रहाई है निजर चर सह तुन लागे कर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जो जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरपौ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जो जुग तौ पाई है सूही महला पहला कौन तेरा जी कवन तोला तेरा कवन सुरा बुलावा कौन गुरु कै पै दीख्या लेवा कै पै मुल करावा मेरे लाल जीओ तेरा अंत ना जाना तू जल थल मैयर भरपुर लीना तू आपे सर्ब समाणा रहाओ मन तारा जी चित तोला तेरी सेव सराब कमावा कट ही पीतर सो सहो तोली इन बिद चित रहावा आपे कंडा तोल तोरा जी आपे तोलन हारा आपे देख्या आपे बूझे आपे है मणजारा अंदला नीच जात परदेसी खिन आवै तिल जावै ता की संगत नानक रहिंदा क्यों कर मूड़ा पावै राग सुही महला चौथा कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम के मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के गुर तुठे मन पर बोधया हर पिया रस गट के रहाओ सतसंगति उत्तम सतगुर केरी गुण गावे हर प्रभ के हर कृपा तार मिलो सतसंगत हम धोवै पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाथी तिस तिस के अमरी जात पात गुर सतगुरु हम वेचो सिर गुर के जन नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो ला जन के सुही महला चौथा हर हर नाम भजो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलगा पौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी हर अस्त्र सेव सुख समगा मेरे मन भज राम नाम अत पिरगा मैं मंतन अर्प धरियो गुरिया गै सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ नरपत राजे रंग रस मान बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हथ फलगा हर राख राख जन किरम तुम्हारे सरनागत पुरख प्रत पलगा दर्शन संत देहो सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुम गा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोको कीजे दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटाऊं सद घुमगा सूही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठ रंग गुर तुठ हर रंग चाड़िया फिर बहु न हो भी भंग मेरे मानो हर राम नाम कर रंग गुर तुठ हर उपदेसिया हर पेटिया राओ निसंग रहाओ मुंद आनी मन मुखी फिर आवन जाना अंग हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग हम मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सर नवलाया सब लाथे किलवख पंग हर दीना दीन दयाल प्रभ सतसंगत मेलो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग
ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕੁਮਾਵੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੂਰੈ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਈ। ਅੰਤਰ ਰੋਗ ਮਹਾਂ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਈ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਬਹੁਤ ਚਿਤਰਾਈ, ਮਨਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਆਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬੂਜੈ।